जीव जंत उस पानी अंदर रहने वाले हैं। फिर तेन उन्हों का पहाड़ से जरूर व्यापदा होगा, इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं, कितना पानी ते सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा नहीं।

चारे पासे सुगंधी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है, ए ता कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। सत सत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मैता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक हुए है ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नू बिठाया कोल, कालू जी नू मेहता कालू नू कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदो लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मेनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हो, मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। सत सगत बोलो श्री। ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी सात सिंगत, आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चे

संसार विच हुण जगत जीयां नूं तारन वास्ते निकल पए, जिथे किथे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह गए। जे सज्जन ठग कोल गए तां सज्जन ठग नूं ठग तों संत सज्जन बना दिता। जे भूमिए चोर कोल गए ते भूमिए चोर नूं साध बना दिता, साधु बना दिता। जे गुरु नानक दी नजर कोड़े रीठे ते पई तां ओ रीठा कोड़ा ना रहा, मिठा हो गया। जे गुरु नानक दी नजर कोड़े राक्षस

0: हे मेरे मन, उस करते पुरख दी आराधना कर। हे मेरे मन, उस करते अकाल पुरख दी उस्तत कर। वड़ियाई कर, कीड़ा करता अकाल पुरख जिन्हें सारा जग बनाए, जिना सब कुछ कर करा रहे ओ करता, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करन योग है, उस करते पुरख दी सलाघा कर। हे मेरे मन, एक मिनट भी उस करते पुरख नू विसारना याद रख। ओ करता पुरख जिसने तेनू संसार ते भेजे है, तू ओदी वड़ियाई विच जुड़ जा, ओदी बेअंतताई विच लग जा।
1: मन मेरे करते नू सलाए,

करो सदा प्रभ अपने मन मेरे करते नू सहलाए। होर वस्तुआं दी बड़ी उस्तत कर दे, ऐ चीज बड़ी खूबसूरत, ऐ चीज बड़ी चंगी, ए भोजन बड़ा सोहना बने, बड़ा स्वाद लै, ऐ वस्तु बड़ी ही अच्छी है, एदे वर्गी संसार ते कोई भी चीज नहीं। होर बड़िया उस्तां कर दे, बड़ा कुछ आखद है, मनुख की भी उस्तत बड़ी कर दे, पर जिदी उस्तत करन योग है उसी कदी कीती ही नहीं, कदी उसनू सलाया ही नहीं कि असली जिहड़ी उस्तत करन वास्ते सी संसार ते आए हां उते कीती नहीं। ऐसा ही सवाल मरदाने दे अगे साहिब गुरु नानक साहिब ने कीता, आखिया मरदाने आ की करन, आखद साहब जी लोगों की उस्तत करना ते अपना घर का गुजारा चलाना, ते साहब आख लगे मरदाने आ लोगों की उस्तत ना कर, आ मैं तेनू अकाल पुरख की उस्तत करनी दसा, अकाल पुरख की उस्तत करिया कर, ए ते उस्तत झूठी है लोगों की करनी, अकाल पुरख की कर, ए सच्ची उस्तत थी, ए उस्तत करेगा कदी भी भुखा नहीं रहेगा, ए गुरु नानक दा वर होए मरदाने नू। साहबां ने उस्तत दे विच ला दिता, आप भी जुड़ जाते सन ते मरदाने नू भी जोड़ लेंदे सन, चल मरदाने आ बाणी आई आ छेड़ रबाब, कीर्तन विच लीन हो जाना ते काल पुरख की उस्तत करनी, ओही जोत सानू उपदेश कर रही है, हे मन अकाल पुरख की उस्तत कर, मन मेरे करते नू सहलाए, उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की, कटाकन को

ठाकुर अर्जुन पातशाह श्री सुखमणी साहब अंदर कितना उपदेश सुंदर दे रहे। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, कहते ने जिहड़ा प्रभु का सिमरन है सारे नाल उच्चा है, पावन है, पवित्र है, श्रेष्ठ है। सिमरन उच्चा क्यों किया भी? कहते ने कि सिमरन उच्चा इस वास्ते है, ना तेरा निरंकार है न ले है, नरक ना जाई। नाम जपन वाला सिमरन करन वाला नरका दे विच नहीं जाता, सिमरन करन वाला। ते जिहड़ा सिमरन करदा है वो नरकां दा भागी नहीं बन सकता, इसलिए सिमरन सावे नाल उच्चा किया गया है।

गोविंद गोविंद संग नाम दौमलीना आठ दम कोछी परो होयो लखीना बुलना तन्ना त्याग के प्रीत चरण को वीरा नीच

0: मैं किस तरह मुड़ जावा, मेरा तो सब कुछ तू ही है। जदों ए गल आखी तां धन गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लहणे नूं अपने गल नाल ला लिया। लहणे को अपने अंग लगा, लहणे को अंगद कर दिया, दूसरे गुरु नानक बना दिता। ए दातां मिलदियां हन गुरु नानक दे दर ते सेवा करके, पर सेवक होके आराम ना पाले। इस दर दा भिखारी बन गया तो अहंकार ना करे, मान ना करे, ते फिर केड़ी वस्तु है जेड़ी नहीं मिलेगी भाई तेनू। इसलिए गुर पीरां की चाकरी, गुरु दे दर दी सेवा तां औखी है। गुर सिख लंघ गुरु पै जाई, समुद्र सागर होवे बहु खारा, बड़ा औखा है गुरु दे मार्ग ते चलना। इसे लई हजूर कहंदे ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर दरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। आख्या जे इस प्रेम दी गली विचों लंघना चाहना है तां फिर इस सिर दा सरफा कदे ना मंगी। जे सिर भी लग जाए तां वी इह सस्ता सौदा समझी। सात संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: सिर दीजे कान ना कीजे, ते फिर जिन्हों ने आपा गुरु दे अर्पण कर दिता प्यारी सात संगत, फिर ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। ओ दाता नहीं, दाता वंडन वाले बन गए, दातार बन गए, जिन्हों ने गुरु नानक दे दर की सेवा कीती है। इसलिए हजूर बख्शिश कर दे भाई, गुर पीरां दी चाकरी है ता करनी, पर जिन्हों ने कर ली ओ सिर्फ कुला ही नहीं तार गए, सारे संसार दे तारनहार बन गए।

काल पुरुष से यदि अरदास करें मंगदे पियन शुभ कर्म अपने वास्ते नहीं, आप तो निरंकारी दोस्त आप तो निरंकार का ही स्वरूप पर ये दास अकाल पुरुष को किस वास्ते मंग रहे हैं, साढ़े वास्ते मंग रहे हैं। साढ़े वास्ते ये महान वड्डी दास शुभ कर्मा देह शिवावर मुहे से है, शुभ कर्मन से कम हूं न करो। शुभ कर्म शुभ कर्म ही सबको बची है। बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल, परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए। विहार निर्मल होना चाहिए, परमार्थ का सदा ही निर्मल। जिसका विहार पवित्र है, विहार सच्चा से सच्चा हो गया, उसका जीवन विहार हो रहा है, दिखावा हो रहा है, वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन। तो शुभ कर्म की विशेषता है सबसे ज्यादा। शुभ कर्म वाली दुनिया में कामयाबी, दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे को शुभ कर्म। तो अजकल भी दर्शन असं कलयुगी जीवन के वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हैं, देह शिवावर मोहे से है। ते ये भी कहते हैं कि कलगी दर सतगुरु जी ने शिवजी महाराज की अरदास की। शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं, असली उसका नाम महादेव है। सतगुरु जी ने आप फरमाया है महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत में भेद। महादेव नु लोग शिव कहते हैं, वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो रब की बंदगी करने वाला, लोग कहते भई ये तो रब रूप ही, क्यों रब नाल जुड़े। इसे तरह महादेव नु शिव जी किया जाता है, पर असल में शिव नाम अकाल पुरख है। उस अकाल पुरख के अगे कलगी धर दशमेश पिता जी ने अरदास की, ये वर मंगिया दे शिवा वर मुहे के है कर्मन से कम हूं। शुभ कर्मा की दात साढ़े वास, तो जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्हों दुनिया जय जयकार हो। अज मेरे कलगी सचे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हों फतेह हासिल हुई धर्म की तज खड़ी कर दी आखो श्री वाह। धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां च फतेह प्राप्त नाशवंत पदार्थां नाल प्यार नहीं किया। अमर वस्तु जो सी धर्म उसनों अपना है, जिदे कोल धर्म है उदे कोल सब कुछ।
धर्म ही सब तो वड्डी गल जिहदे कोल धर्म है भाई उसका जीवन सदा वास्ते सफल धर्म धर्म नाल प्यार कीता इस नासवन शरीर नूं कुर्बान कर समझिया इसने तो बिन इसने तो दिन बिन सी जाना है तो धर्म संगीत धर्म नाल प्यार कीता शुभ गुणा नूं ग्रहण कीता जो कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने मंग मंगी है फिर बाबा जोरावर सिंह से बाबा फतेह सिंह इस तरह शुभ गुणा नूं ग्रहण कर दे सब तो वड्डा शुभ गुण सब तो वड्डा करम हजूर प्रबंधन सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल हरि दे नाम नाल प्यार कीता सिमरन नाल प्यार कीता धर्म नूं उच्चा ते सुच्चा रखिया तो आओ प्यारी अज उन्हां महान पवित्र हस्तियां महान व्यक्तियां दी याद जुड़े आओ जो दात मेरे साईं ने मंगी है आओ आपां भी मंगी आपां किस तो मंगी अपने गुरु तो मंगी आखो श्री वाहे असीं गुरु अगे झोलीए क्योंकि साडा इष्ट कलगियां वाला असीं कलगियां वाले दे सिख ओ साडा गुरु गुर परमेश्वर को पानी चाहिए गुरु ते परमेश्वर फर्क कोई पर अपने इष्ट दे अगे अरदास करिए ते ए मंग मंगी केड़ी जो कलगी दर्श दे पातशाह जी ने अकाल पुरख की अरदास की पहले से बोले पिछले सारी संगत से

तुर्क दुष्ट सब शह किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे कोई

इयो ऐसे दंत कलेश में खपियो संसारा तह बिन सतगुरु को नहीं पहले तनहारा जह ऐसे खड़ग